धुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

0: भक्तिमय सकाळमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे. केलवेणुधुनी 90.4 एफ एम वरती तुम्ही ट्यून इन आहात आणि आता आपण आध्यात्मिक विचार ऐकू.
1: निरंतरता का महत्व. कहा जाता, करत करत अभ्यास जड़मति भये सुजान. अर्थात कोई मंद बुद्धि भी साधारण काम नियमित रूप से करता रहे तो एक दिन उस काम में वो प्रवीण बन जाता है. जैसे बावड़ी यानी कुएं से पानी निकालने के लिए लगाए गए राहत की रस्सी नियमित रूप से पत्थर पर घिसती रहती है और एक दिन कठोर शिला व पत्थर को भी काट देती है. ऐसे ही लगातार बिना रुके किया गया छोटा सा काम भी करामत बन जाता है. असंभव लगने वाले काम केवल बिना रुके सतत करते रहने से ही संभव हो सकते हैं. सचमुच जीवन में चमत्कारी परिणाम दिलाने वाला शक्तिशाली गुण है निरंतरता. निरंतरता अर्थात समय के अंतराल के बिना सतत काम करते रहना, यानी कोई भी कार्य समय न गवाते हुए लगे लगे की तरह करते रहना. सच पूछो, यह जादुई मूल्य निरंतरता साधारण बात में भी असाधारण गुण विशेष भर देता है. ये जीवन रूपी गाड़ी को गति प्रदान करने वाली चाबी है. व्यक्ति के विकास में निरंतरता जरूरी है. कोई भी चीज हासिल करनी हो या जीवन में कोई मकसद या इरादा पूरा करना हो तो मंजिल मिलने तक निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए. प्रयास या प्रयत्न करते समय कई बार सफलता नहीं मिलती और मन उदास हो जाता है. व्यक्ति हिम्मत हार जाता है और प्रयत्न करना ही छोड़ देता है. लेकिन बिना निरंतर मेहनत किए मंजिल नहीं मिल सकती. याद रखे, आज नहीं तो कल निरंतरता के प्रयास करने वाले पुरुषार्थी की विजय श्री अवश्य चरण चूमती है. थॉमस अल्वा एडिसन 999 बार भी बिजली का बल्ब बनाने में नाकामयाब रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने प्रयोगों को निरंतर जारी रखा और आखिर 1000वें बार वे अपने प्रयोग में कामयाब हो गए. अतः निरंतरता को अपनाइए और मंजिल व लक्ष्य को सहजता से पाइए. ऐसी हमारी आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं.

0: वेणुधुनी 90.4 एफएम केएलई गणसू पे आप ट्यून है और अभी हम सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज।
1: आठ और समाजवादी पार्टी के दो उम्मीदवार शामिल। अमेरिका ने वैश्विक बाजार में रूसी डीजल की बिक्री पर लगे प्रतिबंधों में अगले वर्ष अप्रैल तक ढील दी। ये फैसला ईंधन की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि के बीच लिया गया। खेलों में पुतुल सोनवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल्स चैंपियन ऑफ चैंपियंस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचकर देश के लिए पहला पदक सुनिश्चित किया और वेस्टइंडीज ने दूसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और उनके समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों को सामुदायिक भागीदारी के केंद्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल और एक जिला एक उत्पाद जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें पोषण और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, बाल संरक्षण, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण तथा बेहतर समन्वय के माध्यम से योजनाओं को मजबूती से लागू करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजी से बदलती तकनीक के दौर में युवाओं से अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाने और नई तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर शंघाई में आयोजित वैश्विक कौशल प्रतियोगिता 2026 में भाग लेने वाली भारतीय टीम के सदस्यों से बातचीत के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिभागियों को बधाई दी। उन्होंने युवाओं से अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जरूरतों के अनुरूप अपने कौशल को विकसित करने को कहा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पहले दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नूपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है।
2: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
1: सुश्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी की ओर से पहले नियमों और आश्वासनों का पालन न करने, मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति, लोगों की सुरक्षा और नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात संबंधी नियमों को ध्यान में रखते हुए अनुमति नहीं देने का फैसला किया गया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर आज प्रवेश और निकास बंद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: जंतर मंतर पर आज प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रेलवे के पुलिस उपायुक्त बी भरत रेड्डी ने बताया कि दिल्ली के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के 334 कर्मियों को तैनात किया गया है, जिनमें लगभग 120 महिला कर्मी शामिल है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियों की तैनाती का अनुरोध भी किया गया है।
4: लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमने स्पेशल डिप्लॉयमेंट्स किए हैं। दिल्ली में 7 मेजर रेलवे स्टेशन है, उन पे सभी पे हमने राउंड द क्लॉक डिप्लॉयमेंट किया है। टोटल हमने 334 जो जीआरपी के पुलिस पर्सनल हैं वो लगाए हैं, जिसमें 120 के आसपास लेडी पुलिस हैं। प्लस हमने सीएपीएफ की भी मांग की है, उनको भी राउंड द क्लॉक हम डिप्लॉय करेंगे।
3: वहीं सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रहेगा।

0: दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और आवश्यक जानकारी साझा की जाएगी। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन और उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम स्टेशन के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेंगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में यातायात मार्गों में बदलाव को लेकर परामर्श जारी किया है। पुलिस ने यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
2: दांत आज खुजली में आराम, हानि रहे बेदाग दालिम लोशन।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत उन्नत सैन्य उपकरणों के एक भरोसेमंद निर्यातक के रूप में उभर रहा है। कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के चैंबर्स अवार्ड समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि मौजूदा दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की ताकत से नहीं बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से भी तय होती है।
2: हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और ये पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में अप्रोक्सीमेटली 60% अधिक है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2026 के प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यह अभ्यास 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ 7 मित्र देशों ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सचिव तथा रिटर्निंग अधिकारी अजित वर्मा ने इसकी पुष्टि की।
3: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा उम्मीदवारों को बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य और देश के विकास में योगदान देंगे। समाजवादी पार्टी के 10वीं सीट के लिए तीसरा उम्मीदवार न उतारने के फैसले के बाद ही ये तय हो गया था कि सभी उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाएंगे। उत्तर प्रदेश के 10 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल नियुक्त होने के बाद इस्तीफा देने के कारण उनकी राज्यसभा सीट भी खाली हो गई थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा और असम के लोकसभा उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की है, जबकि तमिलनाडु में 2 विधानसभा सीटों का उपचुनाव सत्तारूढ़ तमिलगा विक्ट्री कशगम टीवीके ने जीता है। पुदुचेरी में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने तट्टांचावड़ी विधानसभा सीट बरकरार रखी है। श्री मोदी ने विजयी भाजपा उम्मीदवारों को बधाई दी है और पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। राष्ट्र सेवा के संकल्प और जनसेवा के मंत्र के साथ उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी है। आज की इस विशेष श्रृंखला में हम जानेंगे कि किस तरह ये दृष्टिकोण धरातल पर साकार हो रहा है। इसी कड़ी में बात होगी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के गौरवशाली इतिहास को समर्पित संग्रहालयों और गौरव दिवस की।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, जो अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है। विजन के तहत रांची की पुरानी केंद्रीय जेल में 142 करोड़ रुपए की लागत से बने भव्य जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय ने देश में एक नई चेतना जगाई है। आदिवासियों के आत्म सम्मान को पुनर्स्थापित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जनजातीय समाज के योगदान के बिना भारत

0: का स्वतंत्रता संग्राम अधूरा है।
1: हमारे पूर्वोत्तर के आदिवासी सेनानियों ने और देश के भी हमारे आदिवासी सेनानियों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। इस परंपरा को सम्मान देने के लिए देश लगातार काम कर रहा है। 15 नवंबर को हर साल भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
0: राज्य की गौरवशाली सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता एक अनूठा जनजातीय संग्रहालय गुमला जिला मुख्यालय स्थित संत इग्नेशियस हाई स्कूल परिसर में भी स्थापित है। स्थानीय ग्रामीण कहते हैं कि इस भव्य जनजातीय संग्रहालय में पूर्वजों के पारंपरिक औजारों, कपड़ों और दुर्लभ कलाकृतियों को देखकर हमें गर्व होता है।
2: आदिवासी संग्रहालय को देखने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये संग्रहालय का होना बहुत जरूरी था।
0: वहीं दूसरी ओर भगवान बिरसा मुंडा की पावन जन्मभूमि खूंटी जिले में भी जनजातीय नायकों के सम्मान और जन सेवा की योजनाओं का व्यापक असर देखा जा सकता है। ऐतिहासिक क्रांति के केंद्र रहे इस जिले में अब सुदूर गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही हैं। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज सुखराम मुंडा कहते हैं कि गौरव दिवस के जरिए हमारे नायकों के बलिदान को आज पूरी दुनिया सम्मान दे रही है।
3: बिरसा मुंडा गाँव गाँव संगठन बनाने के लिए घूमे और संगठन बना करके लोगों के साथ समझाया और संगठन बनाया, इसीलिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़े और अपना जंगल जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़े। अभी हम लोग अच्छे हैं और देश का विकास अच्छा हो रहा है।
0: सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के साथ साथ आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास आज झारखंड की नई पहचान बन रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए गुमला से नरेश जायसवाल और खूंटी से ज्योत्सना शीला डांग के साथ मैं रांची से पूनम करकेटा।
4: उत्तर प्रदेश सरकार ने जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नोएडा जेवर करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस के डीजल ईंधन की बिक्री और आयात पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। इसमें रूस के डीजल ईंधन की बिक्री, वितरण, अनलोडिंग और आयात से संबंधित लेनदेन को अधिकृत किया गया है। भारत के पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। उधर रांची में कल दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है।
5: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है
6: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के CP ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
5: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
6: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
5: सारी शिकायतों का समाधान CP ग्राम्स की समाधान दीदी।
4: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
7: धन्यवाद कनकलता। जंतर मंतर पर आज होने वाले प्रदर्शन पर दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट चेतावनी, अनुमति नहीं मिली तो प्रदर्शन अवैध। प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम को अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान और दैनिक भास्कर ने दिल्ली पुलिस द्वारा सोशल मीडिया एक्स पर नागरिकों को लिखे गए खुले पत्र की चर्चा करते हुए लिखा, खाकी वर्दी वाले भी इंसान है जिसका अपना परिवार, अपने लोग, फर्क सिर्फ वर्दी का है, इंसानियत का नहीं। संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय अदालत की न्यायाधीश रही भारतीय मूल की नवनीतम नवी पिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा आज के अखबारों के पहले पन्ने पर है।
4: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस ने आज राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। और वेस्टइंडीज ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज।
9: और अब तक हम सुन रहे थे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज़। आप सुनते रहे वेणुधुनी 90.4 FM।

0: नमस्कार, आप सुन रहे वेणुधोनी 90.4 एफएम केएलई कनसू। आज हम लेकर आए हैं एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर विशेष कार्यक्रम। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है आज। मानसिक स्वास्थ्य भी हमारे शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण है। तनाव, चिंता, अकेलापन या भावनात्मक परेशानियाँ किसी के भी जीवन का हिस्सा बन सकती है, लेकिन इन समस्याओं पर बात करना और समय पर मदद लेना बहुत जरूरी है। इसी संदेश को सरल और प्रभावी तरीके से आप तक पहुंचाने के लिए आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं एक विशेष स्किट, जिसमें रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाया गया है। तो आइए ध्यान से सुनिए ये खास प्रस्तुति और याद रखिए, मन की बात करना कमजोरी नहीं बल्कि खुद का ख्याल रखने की पहली सीढ़ी है। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं, जिसमें हिस्सा लिया है अनहिता तोरगल, खुशी अंकले, अंजुम और तन्वी ने, जो केली जेएनएमसी डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी की फाइनल ईयर की स्टूडेंट है। और उनके साथ है काउंसिल सेल एंड डिपार्टमेंट ऑफ हेड साइकोलॉजी काहेर बेलगावी की मनोतज्ञ डॉक्टर यास्मीन नदाफ जी। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। आप सुनते रहना वेणुधोनी 90.4 एफएम केएलई कनसू।
1: हम अक्सर किसी इंसान को उसकी विकलांगता से पहचान लेते हैं और उसकी बात सुनने से पहले ही उसके लिए फैसला कर देते हैं। ये कहानी है 14 साल की आरती की, जो 8वीं कक्षा में पढ़ती है और जिसे हल्की बौद्धिक अक्षमता है, जो कुछ चीजें दूसरों से थोड़ा धीरे सीखती है, लेकिन वो भी कुछ सपने देखती है और अपनी जिंदगी के फैसले खुद समझना चाहती है। क्योंकि जब हम किसी के बारे में फैसला करने के बजाय उसकी आवाज़ सुनते हैं, तभी सही में बदलाव शुरू होता है। दृश्य एक, आरती को अपने पढ़ाई के संबंधित कुछ सामान लेने के लिए बाहर जाना है।
2: माँ, मुझे स्कूल के लिए कुछ सामान लेना है। नोटबुक खत्म हो गई है और ड्राइंग के लिए कलर्स भी चाहिए। थोड़े पैसे मिल सकते हैं?
3: फिर से पैसे? तुम्हें इतना सब क्या करना है? वैसे भी तुम्हें कुछ आता तो है नहीं। हमारी ही फूटी किस्मत है जैसे तुम जैसी औलाद हमारे यहाँ पैदा हुई है।
2: दादी, ऐसे क्यों बोल रही हो? इसमें मेरी गलती तो नहीं है ना कि मैं ऐसे पैदा हुई हूँ? और मुझे स्कूल में जरूरत है। टीचर ने भी बोला है कि नई नोटबुक लानी है।
1: आप ऐसा क्यों बोल रहे हो माँ जी? उसकी पढ़ाई की चीजों की बात है।
3: हाँ हाँ, तुमको क्या, पैसे तो मेरे बेटे के खर्च होते हैं, सिर पे चढ़ा रखा है। वैसे भी ये बुड्ढी की सुनता ही कौन है।
1: बेटा, तुम उधर मत ध्यान दो। दादी की सोच से तुम्हारा जीवन नहीं बदलता। तुम ये लो पैसे और जो चाहिए लेकर आओ और ध्यान से जाना। दृश्य दो, आरती अपना बैग लेकर स्कूल का सामान लेने निकल रही होती है, तभी उनके घर रोशनी आती है।
4: आंटी, आरती को आप फिर से बाहर भेज रहे हो? आपको डर नहीं लगता? लोग क्या कहेंगे?
1: लोग क्या कहेंगे? रोशनी, कभी ये भी सोचा है कि आरती क्या चाहती है?
4: पर आंटी, आरती को तो चीजें समझने में दिक्कत होती है ना, ऐसे लोगों को ज्यादा बाहर भेजना ठीक है क्या?
2: रोशनी, तुमने कभी सोचा है कि जब कोई मेरे सामने मेरे बारे में ऐसे बोलता है तो मुझे कैसा लगता है?
4: आरती, मेरा वो मतलब नहीं था।
2: मुझे पता है, लेकिन लोग अक्सर मेरे सामने भी ऐसी ही बात करते हैं, जैसे मैं सुन नहीं सकती, जैसे मैं समझ नहीं सकती। मैं धीरे सीखती हूँ, लेकिन मैं महसूस तो उतना ही करती हूँ।
1: हाँ बेटा, सही कहा तुमने। तुम्हें पता है रोशनी, जब आरती छोटी थी लोग मुझे कहते थे इसका क्या होगा, ये कुछ कर पाएगी क्या, क्यों इतना बाहर ले जाते हो। पहले मुझे भी डर लगता था, फिर मैंने आरती को देखा, वो छोटी छोटी चीजें खुद सीखने की कोशिश करती थी। कभी गलती करती फिर दोबारा ट्राई करती, लेकिन कभी हार नहीं मानी उसने।
2: माँ, याद है जब मैंने पहली बार खुद से चाय बनाई थी?
1: हाँ, और चीनी की जगह नमक डाल दिया था।
2: लेकिन बनाई तो थी।
1: बिल्कुल, और उसी दिन मुझे समझ आया, हर इंसान को सिर्फ संभलने की नहीं खुद कुछ करने का अवसर भी चाहिए। दृश्य तीन, और इसी बातचीत के बीच निशा, जो एक सामुदायिक कार्यकर्ता है, आरती के घर आती है।
5: मैंने बाहर से सब सुना। रोशनी, दिक्कत आरती की अक्षमता नहीं है। दिक्कत तो तब होती है जब ये समाज उसकी अक्षमता को ही उसकी पूरी पहचान बना देती है।
4: तो हम क्या करें?
5: सबसे पहले उसकी बात सुने, उसकी जगह खुद जवाब ना दे, उसके लिए हर डिसीजन खुद ना ले, उसको सीखने का वक्त दे और उसे समाज के सामान्य जीवन से, उसकी पढ़ाई से दूर ना रखे।
1: और उसके साथ बात करते वक्त एक इंसान समझकर बात करे।
4: लेकिन कभी कभी लोग मजाक भी बनाते हैं।
2: वही तो सबसे ज्यादा दुखी करता है, जब लोग मेरी बात करते हुए हंसते हैं, जब मुझे ग्रुप से अलग कर देते हैं और जब कहते हैं इसे क्या ही समझ आएगा। तब मुझे लगता है शायद दिक्कत मुझ में नहीं, लोगों के नजरिए में है।
1: और हमने भी समझा है, आरती को सिर्फ संभलने की नहीं, खुद सीखने और आगे बढ़ने का मौका देने की जरूरत है। इसलिए हम उसके साथ छोटी छोटी चीजों की प्रैक्टिस करते हैं। खुद कपड़े पहनना, अपनी चीजें संभालना, पैसे पहचानना और रोज जरूरी के काम खुद करना। इसलिए तो मैं अभी उसके सामान लेने के लिए उसको दुकान अकेले भेज रही थी। गलती होती है तो हम उसके लिए काम नहीं कर देते, उसे दोबारा ट्राई करने का मौका देते हैं।
5: बिल्कुल, और सीखते वक्त भी हम आसान तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक साथ बहुत सारी चीजें सिखाने के बजाय एक एक करके धीरे धीरे सिखा सकते हैं। जो बात समझने में मुश्किल हो उसे आसान शब्दों के द्वारा या फिर चित्र या उदाहरण के द्वारा भी समझा सकते हैं। और जब वो छोटी छोटी भी प्रगति करे ना, तो उसकी तारीफ करे, उसको प्रोत्साहन दे।
1: हाँ, पहले हम सोचते थे कि आरती को हर चीज में हमारी जरूरत पड़ेगी, लेकिन अब हम समझ गए हैं, मदद करना मतलब उसकी जगह काम करना नहीं, बल्कि उसे खुद करने लायक बनाना है।
5: और सिर्फ घर में ही नहीं, उसकी पढ़ाई, कम्युनिकेशन स्किल और रोजारन के जो काम होते हैं ना, उनपे भी ध्यान देना जरूरी है। स्कूल में टीचर्स के साथ मिलकर उसके लिए सीखने का आसान बनाना चाहिए। और सबसे जरूरी, उसे समाज से अलग नहीं, समाज का एक हिस्सा बनाकर रखे।
1: क्योंकि आरती को हमारी दया नहीं,
5: हमारा सपोर्ट, गौरव और समान अवसर चाहिए।
2: और जब मुझे मौका मिलता है तो मैं भी सीख सकती हूँ, मैं भी फैसले ले सकती हूँ, मैं भी अपनी जिंदगी जी सकती हूँ।
5: बिल्कुल आरती, दिक्कत तुम्हारी अक्षमता नहीं है, दिक्कत तब होती है जब समाज तुम्हारी अक्षमता को ही तुम्हारी पूरी पहचान बना देती है।
4: आरती, आज मुझे एक बात समझ आई, तुम्हें हमारी सहानुभूति से ज्यादा
2: इज्जत चाहिए,
1: दया से ज्यादा
2: अपनापन,
5: सुरक्षा से ज्यादा
2: अवसर,
4: और सबसे जरूरी,
2: मेरी बात सुनने का हक।
1: हम अक्सर कहते हैं कि समाज को बदलना चाहिए,
5: लेकिन बदलाव तब शुरू होता है
4: जब हम किसी के बारे में फैसला करने से पहले
2: उसकी कहानी उसी से सुनते हैं। मैं सिर्फ मेरी अक्षमता नहीं हूँ, मेरे भी सपने हैं, मेरी भी पसंद है, मेरी भी भावनाएं हैं और मेरी भी आवाज है।
1: बस जरूरत है
5: उस आवाज को सुनने की,
4: समझने की
2: और उस आवाज से बदलाव लाने की।
6: हर अनुभव की आवाज, बदलाव की शुरुआत।
0: ये था आज का विशेष प्रोग्राम जो आप केली वेणुधोनी 90.4 FM पे सुन रहे थे, जिसमें एक स्किट प्रस्तुत हुआ जिसमें मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने और जरूरत पड़ने पर मदद लेने का महत्वपूर्ण संदेश दिया गया। याद रखिए, हर मुस्कुराता चेहरा हमेशा खुश हो ये जरूरी नहीं, इसलिए अपने आसपास के लोगों को समझे, उनकी बात सुने और बिना किसी झिझक के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करें। अगर आप या आपका कोई अपना तनाव, चिंता या किसी मानसिक परेशानी से गुजर रहा है तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करने में बिल्कुल संकोच न करें, क्योंकि स्वस्थ शरीर के साथ स्वस्थ मन भी जरूरी है। इसी सकारात्मक संदेश के साथ यही आज के एपिसोड में हमने सुना। और आज के एपिसोड में हमारे साथ थी केली JNMC कॉलेज की साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की अनहिता तोरगल, खुशी अंकले, अंजुम और तन्वी। ये सभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट है। और उनके साथ थी डॉक्टर यास्मीन नदाफ जो काउंसिल सेल एंड डिपार्टमेंट ऑफ हेड साइकोलॉजी है, उनको हमने सुना। तो ये था आज का विशेष एपिसोड। कैसा था जरूर बताएगा, उसके लिए नंबर है 9019904904। अपना ख्याल रखिए, अपने मन का ख्याल रखिए और दूसरों के मन का भी सुनिए। नमस्कार।
7: ಶ್ರವಣದಾನ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೆಳಕು. KLE ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೊರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಕೇಳದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಉಚಿತ ಕಾಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯೋಜನೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಈಗಾಗಲೇ 35 ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಳುವ ಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಿರಲಿ. ನಮ್ಮ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವು ಕೇಳುವಂತೆ, ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸದಾ ಸಿದ್ಧ. ಅರ್ಹತೆಗಳು: ಮಗುವಿನ ವಯಸ್ಸು 3 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ತೀವ್ರವಾದ ಶ್ರವಣ ದೋಷ ಇರಬೇಕು, ಶ್ರವಣ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮಗು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿರಬೇಕು. ಲಾಭಗಳು: ಮಗುವಿಗೆ ಕೇಳುವ ಶಕ್ತಿ ಮರಳಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಮಾತು ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮಗು ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಸಹಕಾರಿ, ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಾರಿ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶದ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಉಚಿತ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಇಂದೇ ನೋಂದಾಯಿಸಿ KLE ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೊರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಳಗಾವಿ, ENT OPD ಸಂಖ್ಯೆ 16.
0: आरोग्य क्षेत्रात आपले भविष्य घडवू इच्छिणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी एक सुवर्ण संधी केले अकॅडमी ऑफ हायर एज्युकेशन अँड रिसर्च बेळगावी अंतर्गत असलेल्या स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ तर्फे इंटिग्रेटेड BPH प्लस MPH हा 5 वर्षांचा अभ्यासक्रम उपलब्ध आहे. विज्ञान वाणिज्य किंवा कला शाखेतून पूर्व विद्यापीठ शिक्षण पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेता येईल. तसेच डिप्लोमा पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना थेट दुसऱ्या वर्षात प्रवेशाची संधी उपलब्ध. पदवीधर विद्यार्थ्यांसाठी 2 वर्षाचा मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ अर्थात MPH अभ्यासक्रमही उपलब्ध आहे. NASC कडून A+ मानांकन प्राप्त विद्यापीठात जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा, अनुभवी व बहुविषयक प्राध्यापक वर्ग आणि समुदायाशी निगडीत शिक्षणाचा लाभ घ्या. काहेर हेल्थ अँड डेमोग्राफिक सर्वेलन्स साईटच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष अनुभव मिळवा. तसेच थॉमस जेफरसन युनिव्हर्सिटी अमेरिका, उमेया युनिव्हर्सिटी स्वीडन, PHFI कॅम्पबेल साऊथ एशिया आणि इतर अनेक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संस्थांबरोबरच्या सहकार्याचा लाभ घ्या. NIH, ICMR आणि UNSW ऑस्ट्रेलिया यासारख्या संस्थांच्या सहाय्याने राबवण्यात येणाऱ्या संशोधन प्रकल्पांमध्ये सहभागी होण्याची संधीही उपलब्ध. सरकारी विभाग, सार्वजनिक आरोग्य संस्था, संशोधन क्षेत्र, स्वयंसेवी संस्था आणि आरोग्य व्यवस्थापन अशा अनेक क्षेत्रात उज्ज्वल करिअरच्या संधी तुमची वाट पाहत आहेत. मग वाट कसली पाहताय? आजच ऑनलाइन अर्ज करा kaher.edu.in. अधिक माहितीसाठी भेट द्या काहेर GNMC कॅम्पस, नेहरू नगर, बेळगावी. फोन नंबर 08312444444 extension 4327.

माँ बनने में हो रही है देर, इंतजार है खुशखबरी का। देयर इज वन नेम यू कैन ट्रस्ट, केली फर्टिलिटी सेंटर विद साइंस, सोल एंड सेंसिटिविटी। जिंदगी को दो नई शुरुआत केली IVF के साथ। आज ही विजिट करें केली फर्टिलिटी सेंटर, OPD नंबर 97, शरावती सेकंड।

0: मानसिक आरोग्य दिन म्हणून साजरा केला जातो. प्रतिवर्षीप्रमाणे ह्या वर्षी देखील एक विषय नेमला गेला आहे आणि 2026 विषय आहे, ऐकलेले जिवंत अनुभव, वास्तविक आवाज आणि वास्तविक बदल. खरं तर मानस, पण आपण एक प्रश्न आपल्या स्वतःला विचारूया, मानसिक आरोग्याची आठवण आपल्याला फक्त 10 ऑक्टोबरलाच का व्हावी? खरं तर मानसिक आरोग्य हे एका दिवसापुरती मर्यादित असलेले नाही. जसं आपण आपल्या शारीरिक आरोग्याची काळजी वर्षभर घेतो, तसेच आपल्या मानसिक आरोग्याची काळजी सुद्धा आम्हाला दररोज घेणे आवश्यक आहे. मग 10 ऑक्टोबरचे महत्व काय? हा दिवस आपल्याला मानसिक आरोग्याबद्दल बोलण्याची, त्याविषयी जागरूकता निर्माण करण्याची आणि मानसिक आजारांशी संबंधित गैरसमज व स्टिग्मा कमी करण्याची आठवण करून देतो. मानसिक आरोग्य हा देखील आरोग्याचा एक महत्वाचा भाग आहे हे समाजापर्यंत पोहोचवण्यासाठी हा एक दिवस माध्यम ठरतो. म्हणून 10 ऑक्टोबर हा मानसिक आरोग्याची काळजी घेण्याचा एकमेव दिवस नाही, उलट मानसिक आरोग्याबद्दल वर्षभर संवाद सुरू ठेवण्यासाठीचा हा एक दिवस आहे. म्हणून आजच्या ह्या कार्यक्रमातून आपण मानसिक आरोग्य म्हणजे नेमकं काय, मानसिक समस्या आणि सामान्य भावनिक अनुभव यांच्यातील फरक कसा समजून घ्यायचा, सायकोलॉजी मधील 4 Ds काय आहेत आणि आपल्या मानसिक आरोग्याची काळजी आपण कशी घेऊ शकतो, या सगळ्या गोष्टी अगदी सोप्या भाषेतून समजून घेऊयात. पहिले, मानसिक आरोग्य म्हणजे नेमकं काय? आपण मेंटल हेल्थ हा शब्द खूप वेळा ऐकतो. मानसिक आरोग्य म्हणजे केवळ मानसिक आजार नसणे नव्हे, आपले विचार, भावना, वर्तन, नातेसंबंध, ताणतणाव हाताळण्याची क्षमता आणि दैनंदिन आयुष्यातील परिस्थितींशी जुळवून घेण्याची क्षमता, या सगळ्यांचा मानसिक आरोग्याशी संबंध असतो. प्रत्येक व्यक्तीला कधी ना कधी दुःख होतं, कधी आपल्याला राग येतो, कधी चिंता वाटते, कधी एखाद्या व्यक्तीच्या वागण्यामुळे आपण दुखावतो, कधी परीक्षेचा किंवा कामाचा ताण येतो. हे सगळं मानवी अनुभवाचा भाग आहे. प्रत्येक दुःख म्हणजे डिप्रेशन नाही आणि प्रत्येक चिंता म्हणजे एंग्झायटी नाही. दुःख असणे आणि नैराश्य म्हणजे डिप्रेशन येणे यात फरक आहे का? हो. प्रत्येकाच्या आयुष्यात अशी वेळ येते जेव्हा त्यांना उबग येतो किंवा दुःख वाटते. हे सहसा एखाद्या विशिष्ट कारणामुळे होते. त्याचा दैनंदिन जीवनात फारसा हस्तक्षेप नसतो, फारसा हस्तक्षेप होत नाही आणि सहसा 1 किंवा 2 आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ ते टिकत नाही. तथापि जर ह्या भावना अनेक आठवडे किंवा महिने चालू राहिल्या किंवा इतक्या वाईट पातळीला गेल्या की तुमच्या जीवनाच्या प्रत्येक भागावर त्यांचा परिणाम होऊ लागला, तर तुम्ही नैराश्यग्रस्त असू शकता आणि तुम्हाला मदतीची गरज असू शकते. मानसिक असामान्यता, सायकोलॉजिकल एबनॉर्मॅलिटी म्हणजे काय? आता इथे एक महत्वाचा प्रश्न निर्माण होतो. एखादी व्यक्ती फक्त दुखी आहे, चिंतेत आहे किंवा तिचं वर्तन इतरांपेक्षा वेगळं आहे म्हणून आपण तिला मानसिक दृष्ट्या असामान्य म्हणू शकतो का? नाही. जेव्हा मानसिक आरोग्य तज्ज्ञ एखाद्या व्यक्तीच्या मानसिक स्थितीचा अभ्यास करतात तेव्हा ते केवळ अंदाज लावत नाहीत. त्याच्यासाठी 4 Ds किंवा 4 D ह्या एका प्रमाणित चौकटीचा वापर करतात. सामान्य ताणतणाव आणि गंभीर मानसिक आजार यातील रेषा ओळखण्यासाठी हे 4 Ds अत्यंत महत्वाचे आहेत. चला तर मग हे सोप्या भाषेत जाणून घेऊया. पहिलं, सामाजिक चौकटी बाहेरील वर्तन म्हणजेच डिव्हियन्स. डिव्हियन्स म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचे विचार, भावना किंवा वागणे समाजाने ठरवून दिलेल्या सामान्य नियमांपेक्षा किंवा संस्कृतींपेक्षा खूप वेगळे असणे. प्रत्येक समाजाने वागण्याचे काही अलिखित नियम असतात. जेव्हा एखाद्याचे वर्तन या नियमांना पूर्णपणे सोडून असते किंवा ते सर्वसामान्य आकडेवारीपेक्षा अत्यंत दुर्मिळ असते तेव्हा ती एक धोक्याची घंटा मानली जाते. थोडक्यात अर्थ सांगायचा तर मानसिक आणि सांस्कृतिक नियमांपेक्षा पूर्णपणे वेगळे वागणे. दुसरं, डिस्ट्रेस, मानसिक आणि भावनिक त्रास. एखादे वागणे केवळ वेगळे किंवा विचित्र आहे म्हणून त्याला मानसिक आजार म्हणता येत नाही. त्यासाठी त्या वागण्यामुळे व्यक्तीला अंतर्गत त्रास होणे गरजेचे आहे. डिस्ट्रेस म्हणजे या लक्षणामुळे व्यक्तीला होणारी तीव्र मानसिक वेदना, प्रचंड चिंता किंवा खोल दुःख. काही प्रकरणांमध्ये एक वेगळी परिस्थिती असते. स्वतःच्या व्यक्तीला आपला त्रास जाणवत नाही पण त्याच्या वागण्यामुळे त्याच्या कुटुंबाला आणि आजूबाजूच्या लोकांना प्रचंड मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. थोडक्यात अर्थ, व्यक्तीला किंवा त्यांच्या जवळच्या लोकांना होणारी तीव्र मानसिक आणि भावनिक वेदना. तिसरं म्हणजे डिसफंक्शन, दैनंदिन आयुष्यातील अडथळा. मानसिक आजाराचे निदान करताना हा घटक सर्वात महत्वाचा मानला जातो. डिसफंक्शन म्हणजे जेव्हा मानसिक समस्यांमुळे व्यक्तीला त्याचे रोजचे आयुष्य जगणे कठीण होऊन जाते. हे आजारपण त्याला दैनंदिन जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी रोखते. जर एखादी व्यक्ती मानसिक त्रासामुळे नोकरीवर जाऊ शकत नसेल, शिक्षण पूर्ण करू शकत नसेल, मैत्री टिकवू शकत नसेल किंवा स्वतःची वैयक्तिक स्वच्छताही राखू शकत नसेल तर त्याला डिसफंक्शन मानले जाते. थोडक्यात अर्थ, रोजचे आयुष्य आणि जबाबदाऱ्या सांभाळण्यात येणारी असमर्थता. चौथे म्हणजे डेंजर, धोक्याची घंटा. ही चौथी आणि सर्वात गंभीर स्थिती आहे जिथे त्वरित मदतीची गरज असते. डेंजर म्हणजे तेव्हा एखाद्या व्यक्तीची मानसिक स्थिती स्वतःसाठी किंवा इतरांसाठी घातक ठरते. यामध्ये स्वतःला इजा करून घेणे, आत्महत्याचे विचार येणे किंवा स्वतःच्या आरोग्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करणे समाविष्ट आहे. तसेच जर त्या व्यक्तीचे वर्तन आजूबाजूच्या लोकांच्या सुरक्षेला किंवा जीवाला धोका निर्माण करत असेल तर त्याला डेंजर या श्रेणीत ठेवले जाते. थोडक्यात अर्थ, स्वतःला किंवा इतरांना शारीरिक इजा होण्याचा धोका असणे. हे 4 Ds म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला डिसऑर्डर आहे की नाही यासाठी एक सिंपल चेकलिस्ट नाही. प्रत्येक मानसिक विकाराचा डायग्नोसिस करण्यासाठी ट्रेन्ड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल अनेक गोष्टी विचारात घेतात. लक्षणं किती काळ आहेत, त्याची तीव्रता किती आहे, व्यक्तीच्या आयुष्यावर काय परिणाम होतोय, त्याचा कॉन्टेक्स्ट काय आहे आणि इतर कोणते फॅक्टर्स हे लक्षात घेतात. म्हणूनच गुगलवर सिम्प्टम्स वाचून स्वतःला डायग्नोसिस देणे हे योग्य नाही. सोशल मीडिया आणि मेंटल हेल्थ लॅब्स. आजच्या काळात सोशल मीडियामुळे मेंटल हेल्थ बद्दल जागरूकता वाढली आहे, हे चांगले आहे, पण त्याचबरोबर काही गैरसमजही वाढले आहेत. उदाहरणार्थ, मला क्लेनलीनेस आवडतो म्हणजे मला OCD आहे का? पण OCD म्हणजे फक्त क्लेनलीनेस आवडणे नाही. माझा मूड बदलतो म्हणजे मला बायपोलर आहे का? पण सामान्य मूड चेंजेस आणि बायपोलर डिसऑर्डर एकच गोष्ट नाही. मला कधी कधी लक्ष लागत नाही म्हणजे मला ADHD आहे का? पण ओकेजनल लॅक ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन आणि ADHD हे समान नाहीत. म्हणून मेंटल हेल्थ अवेअरनेस म्हणजे फक्त डिसऑर्डरची नावं शिकणं नाही, त्याचा अर्थ योग्य पद्धतीने समजून घेणे देखील तितकाच महत्वाचा आहे. मानसिक आरोग्याची काळजी घेण्याचे प्रमुख टिप्स: नियमित ध्यान आणि प्राणायाम करणे, म्हणजेच प्राणायाम किंवा मेडिटेशन करणे, भावना व्यक्त करणे किंवा एक्सप्रेस युअर फिलिंग्स, नकारात्मक गोष्टींपासून दूर राहणे, सोशल मीडियावर अतिवापर टाळावे, नियमित व्यायाम आणि सकस आहार खाणे, त्यामुळे शरीरात हॅपी हॉर्मोन्स तयार होतात, पुरेशी झोप घेणे, स्वतःची काळजी घेणे आणि स्वतःसाठी एक वेळ काढणे. कारण श्रोते हो, लक्षात ठेवा, मानसिक आजार म्हणजे वेडेपण नाही, मदत मागणे म्हणजे कमकुवतपणा नाही. लक्षणाकडे दुर्लक्ष करू नका आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे एकमेकांना साथ द्या. जाता जाता एक शेवटचा विचार. आपण फिजिकल हेल्थ बद्दल बोलतो, डाएट बद्दल बोलतो, एक्सरसाइज बद्दलही बोलतो, पण आता मेंटल हेल्थ बद्दलही तितक्याच सहजतेने बोलण्याची गरज आहे. कारण प्रत्येक शांत व्यक्ती ठीक असेलच असे नाही, प्रत्येक हसणारी व्यक्ती ही आनंदी असेलच असं नाही आणि प्रत्येक वेगळी वागणारी व्यक्ती वेडी असेलच असेही नाही. म्हणून डायग्नोसिस करण्यापूर्वी समजून घेऊया, कारण मानसिक आरोग्याबद्दल जागरूकता म्हणजे फक्त मानसिक आजार ओळखणे नाही तर समोरच्या माणसाला माणूस म्हणून समजून घेणेही आहे. धन्यवाद.
1: बेळगाव मधील KLEBM कंकणवाडे आयुर्वेदा हॉस्पिटल आरोग्य क्षेत्रामध्ये उत्कृष्ट सेवा देत आहे. तुमच्या रोगाचे योग्य निदान करून आवश्यक असणारे सर्व उपचार तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून दिले जातील. KLEBM कंकणवाडे आयुर्वेदा हॉस्पिटलचा मुख्य उद्देश रोगाचे निदान करणं आणि योग्य उपचार करणं, तुमच्या आरोग्याची काळजी घेणं हेच आमचे ध्येय. तुमच्या आरोग्याच्या तक्रारी दूर करण्यासाठी आयुर्वेदिक उपचार घेण्यासाठी संपर्क करा KLEBM कंकणवाडे आयुर्वेदा हॉस्पिटल आणि महाविद्यालय शहापूर बेळगाव. फोन नंबर 0831 2486 2866.
2: आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम दीपिका राठौड़ है और मैं KLE संस्था के लिंगराज कॉलेज बेलगावी के BA के साइकोलॉजी की छात्रा हूँ. आज मैं आप सबसे एक बहुत ही खास विषय के बारे में चर्चा करना चाहूँगी जो कि मानसिक स्वास्थ्य है, जिसे अंग्रेजी में मेंटल हेल्थ कहा जाता है. अब आप सबके मन में सवाल आ सकता है कि आखिर मैंने यही विषय क्यों चुना. तो मैं आप सबको बता दूँ कि आज 10 अक्टूबर है, यानी कि मेंटल हेल्थ डे. तो इस बार के मेंटल हेल्थ डे की थीम है लिव्ड एक्सपीरियंसेस हर्ड रियल वॉइस रियल चेंज, यानी कि सुने गए जीवन के अनुभव असली आवाज असली बदलाव. मानसिक स्वास्थ्य एक काफी गंभीर मामला बनकर हमारे सामने आ गया है, वरना पहले तो इसके बारे में कोई भी बात ही नहीं की जाती थी. ऐसा नहीं है कि पहले लोगों की मानसिक स्थिति बिल्कुल सही रहती थी या बिल्कुल खराब रहती थी, बस बात यह है कि उसके बारे में बात कम की जाती थी. विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार यह कल्याण की एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पहचानता है, जीवन के सामान्य तनावों का सामना कर सकता है, उत्पादक और फलदायी रूप में काम कर सकता है और अपने समुदाय में योगदान दे सकता है. यह भी तय करता है कि व्यक्ति के तनाव पारस्परिक संबंध हो और निर्णय लेने को कैसे संभालता है. जीवन में बहुत बार हम उदास होते हैं, बहुत बार तनावग्रस्त महसूस करते हैं और बहुत बार भयभीत भी हो जाते हैं, डर जाते हैं आसपास की घटनाओं से। तो यह जो भावनाएं होती हैं, ज़्यादातर समय यह होता है कि इन भावनाओं से हम बाहर निकल आते हैं, लेकिन कभी कभी इन भावनाओं से बाहर निकलना हमारे लिए मुश्किल सा हो जाता है और एक गंभीर समस्या में वह भावनाएं विकसित हो जाती हैं और एक बोझ के तले दबा हुआ सा महसूस करने लग जाते हैं हम। पर साथ ही में हमारा यह समझना जरूरी है कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य पर हर परिस्थिति में एक जैसा नहीं रहेगा। जैसे जैसे हम अलग चीजों से अवगत होंगे, वैसे वैसे यह बदलेगा। एक और बात, आपको मानसिक बीमारी ना होना यहाँ तक ही मानसिक स्वास्थ्य सीमित नहीं है। आप इंटरनेट पर देखकर खुद का डायग्नोसिस नहीं कर सकते हैं। तो इससे पहले कि आप अपनी मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कुछ भी सोचें, कृपया चिकित्सक के पास जरूर जाएं। मानसिक स्वास्थ्य विकार यानी कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स ऐसी स्थितियां हैं जो व्यक्ति की सोच, भावनाओं, मूड और व्यवहार को प्रभावित करती हैं, जिससे उसके दैनिक कामकाज और सामाजिक जीवन पर असर पड़ता है। तो अब मैं आपको कुछ प्रमुख मानसिक विकार के प्रकारों के बारे में बताती हूँ। अवसाद यानी कि डिप्रेशन, इससे तो आप काफी परिचित होंगे क्योंकि हर जगह ही आजकल इस चीज की बात हो रही है। यह एक सामान्य स्थिति है जिसमें व्यक्ति लगातार उदासी, निराशा और ऊर्जा की कमी महसूस करता है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि अगर आप 2 घंटे के लिए उदास हैं तो आपको डिप्रेशन हो गया है। कहने का मतलब ये कि ये ज्यादा समय तक रहता है। निम्हांस के आंकड़ों के अनुसार भारत के करीब 6.2% लोग डिप्रेशन से पीड़ित हैं। चिंता विकार अर्थात एंजाइटी डिसऑर्डर्स, इसमें अत्यधिक घबराहट, डर या बेचैनी बनी रहती है। इसके अंतर्गत सामान्यकृत चिंता विकार, पैनिक विकार और फोबिया आते हैं। द्विध्रुवीय विकार यानी कि बाइपोलर डिसऑर्डर, इसमें व्यक्ति के मूड में अत्यधिक उतार चढ़ाव होते हैं, कभी बहुत ज्यादा उत्साह यानी कि मेनिया और कभी गहरा अवसाद यानी कि डिप्रेशन। सिज़ोफ्रेनिया, यह एक गंभीर मन रोग है जिसमें व्यक्ति की वास्तविकता की समझ, सोच और व्यवहार बुरी तरह प्रभावित होते हैं। उसे भ्रम या ऐसी आवाजें सुनाई दे सकती हैं जो वास्तव में नहीं होती। जुनूनी बाध्यकारी विकार OCD, जिसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहा जाता है, इसमें व्यक्ति के दिमाग में बार बार एक ही विचार आते हैं और वह किसी काम को बार बार दोहराने के लिए मजबूर महसूस करता है, जैसे कि बार बार हाथ धोना। यह आपने कई लोगों से सुना होगा कि उनके परिवार में कोई ऐसा है जो बार बार हाथ धोता है। सुनने में अजीब है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसे PTSD कहा जाता है, किसी भयानक या आघातजनक घटना, दुर्घटना, हिंसा या आपदा को झेलने के बाद होने वाला मानसिक तनाव। खाने संबंधी विकार यानी कि ईटिंग डिसऑर्डर्स, इसमें खान पान की आदतों से गंभीर असंतुलन हो जाता है, जैसे एनोरेक्सिया या बुलीमिया। कहते हैं कि मानव शरीर की पीड़ा को समाज तुरंत पहचान लेता है, लेकिन मन की पीड़ा प्रायः मौन में डूब जाती है। अब आप कैसे समझ सकते हैं कि आपकी मानसिक अवस्था खराब है या अच्छी है, इसके लिए मैं आपको कुछ लक्षण बताती हूँ। पहला है लगातार उदास या चिंतित रहना, मतलब कि बिना किसी स्पष्ट कारण के हफ्तों तक उदास, निराश या अत्यधिक डरा हुआ महसूस करना। रुचि की कमी, जिन कामों या हॉबीज में पहले मन लगता था अब उनमें कोई दिलचस्पी ना होना। स्वभाव में बदलाव और चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, झुंझलाहट होना या मूड बार बार बदलना। नींद और भूख में गड़बड़ी, बहुत कम या बहुत ज्यादा सोना तथा भूख का कम या ज्यादा हो जाना। एकाग्रता में कमी, लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। भूलने की बीमारी, कैसे फैसले तक न पहुँच पाना या काम में ध्यान न लग पाना। अकेलापन और सामाजिक दूरी, दोस्तों, परिवार और सामाजिक मेल जोल से कतराना और खुद को अलग थलग कर लेना। नशे या गलत आदतों का सहारा ले लेते हैं कुछ लोग, तनाव कम करने के लिए शराब, सिगरेट या अन्य नशीले पदार्थ का सेवन करने लग जाते हैं। आत्महत्या के विचार यानी कि सुसाइडल थॉट्स, ये सुनने में काफी खतरनाक लगता है, पर हाँ, कुछ लोग यहाँ तक भी पहुँच जाते हैं। जीवन बेमानी लगना या खुद को नुकसान पहुँचाने के बारे में सोचते हैं और उन्हें मौत के विचार आते हैं। मानसिक अवस्था को अब भी समाज में एक व्यक्तिगत दुर्बलता, आलस या ढोंग के रूप में देखा जाता है। यह सामाजिक कलंक छात्रों को आत्म अस्वीकृति, संकोच और आत्मग्लानी की दिशा में ढकेलता है। परिणाम स्वरूप वे न तो संवाद कर पाते हैं और न ही समय रहते आवश्यक सहायता कर पाते हैं। छात्रों के संदर्भ में मानसिक स्वास्थ्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह वह समय होता है जब उनके व्यक्तित्व, आत्म छवि और भविष्य की नींव रखी जा रही होती है। बदलते पाठ्यक्रम, निरंतर परीक्षा आधारित मूल्यांकन, सामाजिक तुलना और डिजिटल माध्यमों की आक्रामकता ने छात्र मानस को अधिक अस्थिर बना दिया है। COVID-19 महामारी ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को और जटिल बना दिया। ऑनलाइन शिक्षा, सामाजिक एकाकीपन, तकनीकी थकान और अनिश्चितता ने मानसिक थकावट को जन्म दिया। छात्रों पर भी इसके कारण बहुत प्रभाव पड़ता है, जैसे कि वे अपने आप को चुप करने पर विवश कर लेते हैं क्योंकि उन्हें डर रहता है कि लोग उन्हें कमजोर ना समझ ले। सहपाठियों और शिक्षकों की प्रतिक्रियाओं का भी भय होता है। मदद मांगने पर असफल माने जान लेने का जोखिम होता है। परिवार की अस्वीकृति, वह कहते हैं ना, हमारे घर में ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। राजस्थान का कोटा शहर देश भर में जेई और नीट की तैयारी के लिए प्रसिद्ध है, आपने भी जरूर सुना होगा। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह छात्रों की आत्महत्याओं के कारण सुसाइड हब के रूप में भी चर्चा में रहा है। यहां आने वाले किशोर छात्रों पर 14 से 16 घंटे की पढ़ाई का दबाव, लगातार होने वाले वीकली टेस्ट रैंकिंग, माता पिता की उम्मीदें और अकेलापन का भारी मानसिक बोझ होता है। इन घटनाओं के बाद प्रशासन को हॉस्टलों में एंटी सुसाइड स्प्रिंग वाले पंखे लगाने पड़े और कोचिंग सेंटरों में कंपलसरी काउंसलिंग सेशन शुरू करने के निर्देश दिए गए। चिकित्सा शिक्षा यानी कि मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में भी छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य गंभीर मुद्दा बना हुआ है। अब मैं आपको एक काफी चर्चित घटना के बारे में बताती हूँ। अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज में एक 19 वर्षीय MBBS छात्रा ने अपने जन्मदिन के दिन ही हॉस्टल में खुदकुशी कर ली, जिसने अपने सुसाइड नोट में खुद को अकेला और असफल बताया था। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि NMC की टास्क फोर्स रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में देश में 119 मेडिकल छात्रों ने आत्महत्या की और 1100 से अधिक छात्रों ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। इसका मुख्य कारण सीनियर डॉक्टरों द्वारा की जाने वाली रैगिंग, नींद की कमी और अस्पतालों में 36-36 घंटे की लगातार ड्यूटी का तनाव है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित टास्क फोर्स ने देश की 2.4 लाख से अधिक छात्रों पर एक सर्वे किया। इस सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि लगभग 9% छात्रों ने लगातार आत्महत्या के विचार आने के बारे में बताया है और 15% छात्र लंबे समय से तनाव, अवसाद और अकेलेपन से जूझ रहे हैं। इसके लिए कुछ आसान से उपाय मैं आपको बताऊंगी जो आपने कई जगहों पर सुने होंगे। पर्याप्त नींद ले, समय से सोए, समय से उठे, कम न सोए और बहुत ज्यादा भी न सोए, नियमित व्यायाम या वॉक करें, संतुलित आहार लें, ध्यान और योग करें, डिजिटल ब्रेक लें, लोगों से बात करें। तो आइए याद रखें, हमारा मन भी हमारे शरीर की तरह है, इसे प्यार, देखभाल और थोड़े से आराम की जरूरत है। आप अकेले नहीं हैं, आपकी मुस्कान कीमती है और हर नया दिन एक नई शुरुआत है। अपना ख्याल रखें, हंसते रहें और अपने जीवन को खुलकर जिएं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।
3: केले वेणुधोनी 90.4 FM पे आप ट्यून इन थे और आज का ये विशेष प्रोग्राम आप सुन रहे थे विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पे। हमारे साथ थी सानिका, प्रियंका और दीपिका, जो केली सोसाइटी लिंगराज कॉलेज की BA थर्ड सेमेस्टर की छात्रा हैं। आज के विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के इस विशेष कार्यक्रम में हमने मानसिक स्वास्थ्य के महत्व और उसकी देखभाल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की। हम सभी के जीवन में कभी कभी खुशी, कभी दुख, कभी तनाव तो कभी चिंता के पल जरूर आते हैं। ये जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन जब मन परेशान हो तो अपनी भावनाओं को दबाकर रखने के बजाय किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात जरूर कीजिए। अपने लिए थोड़ा समय निकाले, पर्याप्त नींद ले, नियमित व्यायाम करे, सकारात्मक गतिविधियों में भाग ले और जरूरत पड़ने पर मनोवैज्ञानिक या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की मदद लेने से बिल्कुल ही हिचकिचाए ना। याद रखिए, मानसिक परेशानी होना कमजोरी की निशानी बिल्कुल नहीं है। मदद मांगना साहस की बात है। हमें मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का मजाक उड़ाने के बजाय एक दूसरे को समझना चाहिए और सहयोग देना चाहिए। मन की बात कहिए, अपनों का साथ लीजिए, मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दीजिए और जीवन को खुशहाल बनाइए। इसी महत्वपूर्ण संदेश के साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। हमें उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम आपको मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने और दूसरों को भी जागरूक करने के लिए प्रेरित जरूर करेगा। मैं हूँ आपके साथ मनीषा, और ऐसे ही हमारे प्रोग्राम सुनने के लिए जुड़े रहना केली वेणुधोनी 90.4 FM के साथ। नमस्कार।

हेलो नमस्कार मित्रों दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है एकदम फर्स्ट क्लास चकाचक और जिंदाबाद होंगे। दोस्तों लगता है आज का मूड देखकर कि एकदम सब धमाल मूड में है, और जहां धमाल मूड की बात आती है वहां आती है रिलैक्सेशन की बात, और रिलैक्सेशन की बात आती है वहीं आती है हमारे शो बी रिलैक्स की बात, जो आता है ओनली ऑन वेनू ध्वनि 90.4 KLE कनसू पर। और मैं हूँ आप सभी का प्यारा दुलारा हैंडसम दोस्त यानी कि RJ आयुष, और मैं हूँ आपसे करने वाला आज बात कुछ एक ऐसे टॉपिक पर जिससे सबका मूड एकदम फर्स्ट क्लास हो जाता है। भैया देखिए, हमारी इंडियन फैमिलीज में तो कहीं बाहर जाने का मतलब ही खाना होता है, और फिर आपको पता ही है इंडियन फूड से अच्छा और कुछ भी नहीं। तो आज करेंगे बात हम आज इसी टॉपिक पर जिसका नाम है द क्रूजींस ऑफ इंडिया। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारा शो बी रिलैक्स ओनली ऑन वेनू ध्वनि 90.4 KLE कनसू पर।

One more time to your favorite show, Be Relax, और आपने ट्यून किया है वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु। हमारी बात चल रही है आज इंडियन क्रूजींस पर। दोस्तों देखिए, भारत जो है वो भूमि है कल्चर्स की, ट्रेडिशंस की, रिश्तों की, और इस इनक्रेडिबल डेज की डिशेस जो है वो रिफ्लेक्शन है यहाँ के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मल्टी कल्चर इन्फ्लुएंसेस की। फ्रॉम द बुसिंग स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई टू द सीनरी बैकवर्ड्स ऑफ केरला, द फ्लेवर्स ऑफ इंडिया आर एज वेरीज एज इट्स लैंडस्केप्स। दोस्तों हमारे भारत देश में हर त्योहार, हर इवेंट या फिर हर खुशी के लिए एक अलग और स्पेसिफिक डिश है जो पूरा परिवार सेलिब्रेट करने के बाद एंजॉय करता है, और फिर चाहे वो पूरन पोली हो या बिरयानी, हमारे हाथ जो है रोके नहीं रुकते हैं। लग रहा है मेरे साथ साथ आपकी भी जीभ ललचा रही है, तो चलिए इस ललचाहट को थोड़ा और बढ़ाते हैं और करेंगे बात आगे इसी टॉपिक पर और सुनाएंगे आपको कुछ जबरदस्त गाने। तो बने रहिए हमारे साथ वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु पर।

हेलो वेलकम वेलकम वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन एंड पीपल ऑफ ऑल द एजेस टू आवर प्राइम शो बी रिलैक्स, जिससे सुनकर आप हो जाते हैं एकदम रिलैक्स और स्ट्रेस फ्री। और वो तो होंगे ही, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं इंडियन फूड यानी इंडियन खाने के ऊपर, इंडियन क्यूजींस के ऊपर। दोस्तों, जब भी इंडियन खाने की बात आती है, वहाँ फ्लेवर्स और मसाले का जिक्र बिल्कुल होता है, क्योंकि यही वो राज है जो हमारे खाने को एकदम अलग और स्पेशल बनाता है। एट द हार्ट ऑफ इंडियन क्यूजींस लाइज इट्स रिमार्केबल यूजेस ऑफ स्पाइस, एकदम सुगंधित मसाले जैसे जीरा, धनिया, हल्दी, ये इलायची, इन सबको अलग अलग कॉम्बिनेशन में ब्लेंड करके यूनिक फ्लेवर्स बनाए जाते हैं जो हम यूज करते हैं हमारे इंडियन डिशेस में। अब देखिए, इंडिया में इतने सारे रीजन्स हैं और हर जगह अपने अपने तरीके से लोग मिश्रण बनाते हैं और स्वाद का आनंद लेते हैं यानी मजा लेते हैं। आप में से भी कई लोग मसाले के बहुत ज्यादा शौकीन होंगे, कभी खाने में चाट मसाला तो कभी गरम मसाला तो कभी, खाने को चटपटा बनाने के लिए नमक और नींबू का इस्तेमाल। आखिर भैया, स्वदेशी तो हम है ही। चलिए बताऊंगा मैं आपको कुछ रीजनल डाइवर्सिटीज के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं करूंगा आपका मनोरंजन और आपको सुनाऊंगा एकदम धमाकेदार संगीत। तो सुनते रहिए मेरे साथ वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू।

हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आप सभी के पसंदीदा शो बी रिलैक्स में। और आप ट्यून कर चुके हैं बेलगावी का सबसे बड़ा और पहला रेडियो स्टेशन वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु, और मैं हूं आप सभी का प्यारा RJ आयुष। दोस्तों, इंडिया के वास्ट होने का पता लगाया जा सकता है उसकी फूड वेराइटीज और फूड डाइवर्सिटी से, क्योंकि हर जगह की एक अपनी फेमस डिश होती है। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट रीजन हैज इट्स ओन कल्नररी आइडेंटिटी। जहाँ नॉर्थ में आपको मिल जाएगी एकदम छठाकेदार बिरयानी और गरमा गरम कबाब, वहीं साउथ आपको ऑफर करता है राइस मेड डिशेस लाइक इडली डोसा, जिसको सर्व किया जाता है नारियल की चटनी और सांभर के साथ। जी मैं पानी आने लगा है लगता है। द वेस्टर्न कोस्ट गिव्स अस सी फूड रिच डिलाइट्स लाइक गोवन विंडोल्स, और वहीं ईस्ट में मिलती है फ्लेवरसम फिश करीज एंड स्वीट्स लाइक रसगुल्ला। इन सारी डिशेस को सुनकर आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा। चलिए, आप अपनी फेवरेट डिशेस के बारे में भैया कर दीजिए अपने घर में फरमाइश, और बने रहिए हमारे साथ हमारे शो बी रिलैक्स में ओनली ऑन वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु पर।

नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द शो। और आपकी फरमाइशों के साथ हम बात करेंगे आज कुछ स्ट्रीट फूड्स के बारे में। और आपने ट्यून कर लिया है बलगावी का सबसे बड़ा और पहला रेडियो स्टेशन वेनु ध्वनि 90.4 के LE कनसु और जे आयुष के साथ। बात करते हैं स्ट्रीट फूड एक्स्ट्रावेगेंजा की। इंडियन स्ट्रीट्स कम अलाइव विद अ वाइब्रेंट असॉर्टमेंट ऑफ स्ट्रीट फूड, जैसे चटपटी चाट, पानीपुरी, वड़ा पाव, ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिससे हम लोग और टूरिस्ट काफी ज्यादा पसंद करते हैं और एंजॉय करते हैं। दिस क्विक बाइट्स कैचेस द एसेंस ऑफ इंडियन फ्लेवर्स, ऑफरिंग अ बर्स्ट ऑफ स्पाइसेस, टेक्सचर्स एंड वो अनुभव जिसको आप कभी भी नहीं भुला सकते। भैया ये सब चीज अगर आप खाते हैं तो आपका मन एकदम प्रसन्न हो जाता है और खुशम खुश हो जाता है। दोस्तों हम लोग खाने से इतना जुड़ चुके हैं कि भैया कोई भी डिश के बारे में अगर हम उसका नाम सुनते हैं हमें उसका टेस्ट आने लग जाता है। तो ये अनोखी मेंटालिटी बन चुकी है ना। आपके साथ भी शायद ऐसा होता होगा, आप लोगों के भी कई सारे स्ट्रीट फूड फेवरेट होंगे। आजकल तो भैया हर चीज घर पर ही एक्सपेरिमेंट हो जाती है, लेकिन फिर भी हम लोग चाहते हैं कि भैया हम लोग बाहर का खाना खाएं। अब देखिए खाने की बात हो रही है और साथ में मनोरंजन ना हो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो कहीं जाइएगा मत, क्योंकि मैं सुनाने वाला हूँ आपको कुछ दिल को छू जाने वाले गाने ओनली ऑन वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु पर।

हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। इतने प्यार के लिए आप सभी का धन्यवाद। और आज हम बात कर रहे हैं भारतीय व्यंजनों के बारे में, यानी इंडियन क्विजींस पर। दोस्तों, रीजनल और स्ट्रीट फूड की बात तो कर ली, अब हम बात करते हैं उन रिचुअल्स की, ट्रेडिशंस की, यानी अलग अलग ओकेशंस की जहां हम अलग अलग तरह का खाना बनवाते हैं। दोस्तों, इंडियन फूड इज नॉट ओनली अबाउट टेस्ट, बट इट्स अबाउट द रिचुअल्स दैट सराउंड्स इट। फ्रॉम द एलाबोरेट फीस्ट ऑफ वेडिंग्स एंड फेस्टिवल्स टू सिंपल शेयरिंग अ मील विद अ फैमिली, फूड भी उन चीजों में से एक हो गया है जो हमें एकदम जोड़े रखता है, साथ में कनेक्टेड रखता है। और कई ऐसी ट्रेडिशनल रेसिपीज हैं जो पास ऑन होती है जनरेशंस टू जनरेशंस। भैया, अगर कोई नानी है या कोई दादी है, उन्होंने कोई डिश की रेसिपी एक्सप्लोर करी है, वो जाती है उनकी बेटी को, देन उनकी बेटी को, तो जनरेशंस में पास ऑन होती है, विच प्रिजर्व्स नॉट ओनली द ओरिजिनल फ्लेवर्स बट द टेस्ट, ऑल्सो द स्टोरीज एंड द हेरिटेज ऑफ पीपल। और दोस्तों, जैसे कि आप भी जानते हैं, हमारा खाना सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा फेमस। कई सारे मसाले और फूड तो एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं, जिससे हर इंसान उसका लुफ्त उठा सकता है। और अब आप लुफ्त उठाइए कुछ जबरदस्त गानों का और सुनते रहिए हमारा शो बी रिलैक्स ओनली ऑन वेनू ध्वनि 90.4 KLE कनसूपर।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्म आके गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

हेलो, क्या बात है। बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। और आप सुन रहे हैं वेणुध्वनि 90.4 KLE कनसू विद RJ आयुष। दोस्तों, जैसे इंडियन फूड जितना स्वादिष्ट है उतना ही इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी है। यानी सिर्फ ये हमारे टेस्ट बड्स को ही नहीं सेटिस्फाई करता, बल्कि मसाले जैसे हल्दी या जिंजर गार्लिक इज नॉट ओनली फॉर फ्लेवर्स बट ऑल्सो फॉर देयर पोटेंशियल मेडिकल प्रॉपर्टीज। आयुर्वेदा, जिससे हम जानते हैं एंशियंट इंडियन मेडिसिन सिस्टम के नाम से, विच एम्फेसाइजेस द बैलेंस ऑफ फ्लेवर्स and nutrition in meals to promote all over well-being। और दोस्तों, आजकल इंडियन डिशेस को किसी और डिश के साथ मिक्स करके अलग अलग रेसिपीज भी हर रोज बनाई जा रही है। इमेजिन अ फ्यूजन ऑफ इंडियन स्पाइसेस विद इंटरनेशनल क्विजींस लाइक मैक्सिकन, इटालियन और जापानीज। दिस ब्लेंडिंग ऑफ फ्लेवर्स क्रिएट्स एन एक्साइटिंग कल्चरल लैंडस्केप्स दैट्स कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। सोच कर ही मजा आ रहा होगा। चलिए मजे को करते हैं एकदम दुगना और पेश करते हैं आपके लिए एकदम जबरदस्त चटाकेदार हिंदी गाने। सुनते रहिए हमारे साथ वेणुध्वनि 90.4 KLE कनसू।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसू और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

टूनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है, इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

ट्वेंटी 90.4 के एल ई कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु धुनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

मधुबनी 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही, इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

सुनते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

0: नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ उठोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।
1: या

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसोपिया आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों के भारत में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के भारत में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

पुणे 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है, इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुली 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग। और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ उठोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

टूनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है, इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धूली 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरू थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही, इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।